मंदिर जाकर से बादशाह जी बार तानन साहिब श्री गोविंद सिंह तानन साहिब आप से पावन पावन पावन आप की कृपा बाणा संस्कार कर दे आप जब पढ़ते हैं धर्म पर कर दे छोटे बात कर दे बादशाह नाम नाम से तानन बख्श कर नाम नाम जो नाम नाम कर दे समूह संतान नाम नाम समूह संतान नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम

तव प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूपा पार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृत भान दस चार चार निधान।

त्वा प्रसाद लघु नराज छंद जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे।

दस्तु हि बृछस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्धस्तु हि भजस्तु अंग भजस्तु अंग रटस्तु अंग ठटस्तु अंग जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि।

त्व प्रसाद कबित खूक मल हरि गज गद हा विभूत दारी गिद्वा मसान बास करियो ही करत है खूक मट बास लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन साधई मरत है बिंद के सधैया दाहे हीज के बटैया देत बंदरा सदीव पाए नांगे ही फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छेन कैस कह तरत है भूत बन चारे छेत छाना सब दूता थारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है त्रिण के भछैया धन लोभ के तजैया दित गौन के जैया ब्रिक भैया मानियत है नभ के उड़ैया ताहे पंछी की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है जिते बड़े ज्ञानी तिनो जानी पै बखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल अनियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया गह नभ के उड़ैया सोच रैया गह बखानी है फल के भुसैया ताहे बांदरी गजैया गहे आदस फिरैया दत भूत कह पछानी है जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग आग के फसैया सो चकोर सम मानिए सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जेह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब देन चार लिखी केस नाम के महंत लहियत है माधव भवर ओवटे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है मूढ़ रूढ़ पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके रखे रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है जो कि जट्टा थारी सती सच बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है न्योली गरम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठंड ना बहत है मानव फनिंद देव दानव ना पावे भेद भेद योग देव नेत नेत कह कहत है नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव कर ही करत है चंद्रमात शीतल न सूर सदपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है शिव से तपस्या ब्रह्म से न वेद जारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है ज्ञान के विहीन काल का फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है।

अपना था अपना अनेक तन घायल सहत है। जाप के कियत जो पायत अजाप देव बूदना सदीव तुही तुही उचरत है। नभ के उड़ेत जो नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल वो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर

साफी मानस की जात सब एक पहचान बो करता करीब सोई राज करहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही की सेव सब ही को गुर देवे एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई बुझाओ निवाज उई मान सब एक पय अनेको भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आप को रलाव है अल्लाह अभेक सोई पुराण ओ पुराण ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है जैसे एक आग ते कनु का कोठ आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक दूर ते अनेक दूर मूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे केत कछ मछ केते उनको करत भज केते अज वच हो सपज उड़ जाहेंगे केत नव बीच अच पछ को करेंगे भज केतक प्रताच हो बचाए खाए जाहेंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे तेज ज्यो तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे कुकत फिरत केते रोवत मरत केते जल में डुबत केते आग में जरत है केते गंगवासी केते मदीना मकानी वासी केतक उदासी के ब्रह्माई फिरत है करवत सहत केते भूम में गड़त केते सुआ पे चढ़त केते दुख को भरत है ज्ञान में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है सोध हारे देवता विरोध हारे दान बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हरे जो आचार पूज हारे बाहन

देह दोखं कहूं औखदि रोग के सोख सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जाच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सादगी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम के भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दान भी हो कहूं जच विद्या धरे मान भी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं गोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारं कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राजसाजं कहूं राजरेदं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाग्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राज

गीत कहूँ मलेज व्याख्या कहूँ बेजरी कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारडो गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूँ छाल छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजंग धे राजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी अक्षयाद विधाता नत्र संग

नरेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न सोग न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जय जात न पात न मात पितं जय रचयं छत्री छत्र चितं जय राग न रेख न रोग फणं जय द्वैख न दाग न दोख गणं जय अंडह ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव अदेव अभेव नरंग नर पाल नृपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग की ये देव देव सराध पितंग खंड प्रताप प्रचंड गतं प्रभ जात न पात न जोत जुतंग जे तात न मात न भ्रात सुतंग जे रोग न सोग न भोग भुअंग जे जंपह किन्नर जछ जुअंग नर नार नपुंसक जाहे किए गण किन्नर

देश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सिरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप अडंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जपय सुत सिंध दो मुख ताव तपय कई कल्पन लो तप ताप करय नहीं नैग कृपा नित पान परय जय फोकट धरम सभय तजह एक चित्त कृपा निद को जप है तेउ याभव सागर को तरह भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं को

न मौत है, न साख है, न संग है, न जज है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साव है, न साह को कुमार है, न नेह है, न गेह है, न देह को बनाव है, न चल है, न छिद्र है, न

न तात है न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न भूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सूच है, न ग्राम है, न काम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूति।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है भूत वेग है बलि अरूप राग रंग है न द्वैग है न भेग है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिन्ह वर्ण है वे अंत है अनंत तेज जानिए भूम विज है सदा छिज तेज मानिए न आद है न व्याद है अगाध रूप लिखिए दुख है दाग है अच्छे प्रताप देखिए न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न चित्र

तपी करंत सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आदि जे बड़े तपस तपी विशेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ वेखिय अगाध आदि देव की अनाद पात मानिए नजात पात मंत्र मित्र सत्र।

दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख प्रमाथ, दुष्ट हरता दृष्ट करता जगत मय जय गाथ। भूत भव भविख भवान प्रमाण देव गंज, आद अंत अनाद श्रीपद परम पुरख।

दुष्ट हरता बुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र बालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद।

कहाँ कर्म को कर्म है, कहाँ भ्रम को नाश, कहाँ चेतन की चेष्टा, कहाँ चेत प्रकाश दोहरा, कहाँ नेम संयम, कहाँ कहाँ ज्ञान ज्ञान, गुरु के सो के गम।

असुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकन धुजा फरंकन फणि फुंकारण ज्योत जिते सरधार विवर खंड दुष्ट प्रकर खंड पुष्ट प्रहर खंड दुष्ट मथे जय जय हो सी मै खासुर मर्दन भूमा का सलूर्द थे दामनी प्रहासन सुछम निवासन सृष्ट प्रकाश

संश्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्रगते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथाहे एक वृत्ते जय जय हो सी मखासुर मर्दनाथ कुमार काद वृत्ते सुर नर मुर वंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृद्ध मथे कावरु कुमार अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंगणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय हो सी सब ठौर निवासन बाय पताल कासन ले संकटी निवारण धम उधारण तेज प्रकरखण तुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आदा नाद अकाद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपद

के हर लंके याद तंके क्रूर कथे जय जय हो श्री रक्ता सुर खंडन शुंभ चक्रतन शुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोज विसोचन कौज

अष्टायत वाहन बोल निबाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो से मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध व्रते दुख दुख प्रवचन सेव कर रक्षण संत व्रत क्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दुष्ट प्रदा है अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय हो से मैं खास मर्दन साध व्रत क्षण दुष्ट हंते कारण करी ली गर्भ गई ली जोत जति ली तुंद मते अष्टायत चमकण सस्त्र झमकण दामिन दमकण आदृते डुकडुकी दमंके बाघ बबंके भुजा फरंके शुद्ध गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चचरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भटे बापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड्या

दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पद महापद ये है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह अच्छा है। जान को दे द अजान को दे द जमीन को दे द जमान को दे है। काहे को डोलत है तो सुध सुंदर श्री पद मा पतल है। रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते वो भात बचावे। सत्र अनेक चलावत घावत तन एक न लागन पावे। राहत है अपनो करते कर पाप समूहन भेटन पावे। और की बात कहा कह तू सौ सो पेट ही के बट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूमा काश पताल रसातल जच भुजंग सब शरण्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हु मिल गायो। वेद गते व न भेद लखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्पाण सब बजारे। भेद न पाए सक्यो न भेद को खेदत है छेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोग न संग तिहारे। आद अनाद अगाद अपेगद वेख जप्यो तिन ही गुलतारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरो कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुहकारे। दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कवित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रन के साल है। दान के देवैया महामान के बटैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया।

के फिरंगी मारे कंधारी गुरे सी जाने पछम के पछमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेले तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहले माग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे जिन मचीन के सीजन आवे ते बते दे आए दुख दे के दलत है। जिन्हें तोहे जायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साथ दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछे पहुँचत दाहे चिट्ठी की चिंगार।

ससुरा सी कित सूरज प्रकाश कित मुंडिया उदास जुग द्वार दहियत है किते महाधीन किते व्यासे प्रवीन किते कुमेर कुलीन किते जस कहियत है करत है विचार पैना पूरन को पावे पार ताहित अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार है न पार वार पाइये न पार पै अपार के बखानिये अद्व अपनासी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के कमानिये जंत्र हूं जात जय की बाप हूं न मायता की पूर्ण प्रभा की सो छटा के अनुमानिये तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानिए तेज हूं को तार है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है।

सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध का भूत है के अच्छा अविनाशी है काम को कुरिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काल है के शत्रुण के साल है के मित्रण को भोगत है के वृद्धता की पासी है जो गुहों को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूं को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीवन को मंड है के स्त्री है नर है विश्व को भरण है।

हिंगुला हिमा लगा वह बसी हल पिधाव पूर भी न पार पावया सत अनास है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेवना दयाद वह विनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है सेवक अधीन है घटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं के जोग है धरैया द्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा वध छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप कालिंद्र के गोल के हंसनी सिसी हरु महीरा सी हुसनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाओ कण रूपा कैसी रामपुर सूरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी बूर सी सासी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा ने रहा सके सी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्र गिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार पकांसी बिलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासीस के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है भकरी गंधारी गोर कखरी गर्दे जाचारी पावन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्वठौर मैं बिराज

0: महाराज ने कहना कीता भाई जिथे तेरा नगीना है तू लभना कर। फिर इसने खालसा जी जल दे विच अंदर दृष्टि पा दृष्टि करके देखना कीता अपना नगीना निहारना कीता है।
1: नगीने परे समदाई
0: ओथे अगीना अनेका ही नगीने सन
1: हिरन के गंज लगाए
0: ए प्रकार हीरे जवाहरात ओथे बहंत ही पए हुए सन।
1: लखी प्रभु माया बिस्माए
0: यो महाराज ने कला वरता के इस दी आखा खोलनिया कीतिया हन। इस प्रकार खालसा जी कलगी धर पातशाह महाराज जी दी बेअंत वड्याई है। खालसा जी ये जो स्थान है ये महाराज जी ने सतयुग के समय के विच तप की

जी से जिन जग मह सुख वासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन तूटी जम की फासी जन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी तिन का भव सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी

देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तुस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकण को सेवगुण सुख दियो सत्रण को पल मोह पद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत छींटी ते कुंचर यस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जा

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। श्री वाहिगुरु जी अरदास। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दिया वेधाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। कलगीधर जी पिता पंथ देवाली अमृत के दाते। शमशेर बहादुर जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाही जी दे आत्मक स्वरूप। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। जागती जो जाहरा हजूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सब थाई होए सहाय। चार साहिबजादे साहिब अजीत सिंह जी साहिब जुझार सिंह जी साहिब जोरावर सिंह जी साहिब फतेह सिंह जी। पंज प्यारे चाली मुक्तियो सर्व शहीदो मुरीदो सचे आर्यो प्यारो सब थाई होए सहाय। सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास। तिसै अगे नानका खले कीचे अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहिब बोलो जी। सर्व समूह खालसे जी की अरदास। श्री वाहिगुरु जी के पास जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी का मन नीवा मत ऊची मत पद का राखा आप। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेग फतेह। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे धर्म का जयकार। खालसा जी साहिब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान सखी दान गुरमत दान बुद्ध बबेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरमंदिर साहिब अमृत सर सरोवर जी के स्नान। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दार मेले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी संतोख सर जी बबेक सर जी राम सर जी कौल सर जी तरन तारन जी तपियाने जी खडूर जी गुरु की बौली। श्री गोविंदवाल साहिब जी के स्नान दर्शन दार मेले बोलो जी। थम जी ननकाने जी करतारपुर जी बाबे नानक डेहरे जी तख्त केसगढ़ साहिब आनंदपुर जी कीरतपुर जी पातालपुर जी लखनौर जी चमकौर जी फतेहगढ़ साहिब जी दमदमा साहिब जी धमतान जी मुक्तसर जी पौंटे जी तख्त पटना साहिब हरमंदर दिल्ली मैं शीशगंज रकाबगंज बाला साहिब बंगला साहिब सत्तो झंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दार मेले बोलो जी। हकौड़ साहिब जी पंजे साहिब जी कपाल मोचन जी रण मोचन जी नानक मत्ते जी तिलगन जी जी नानक जीरा जी शिकारघाट जी हीराघाट जी माता साहिब देवां जी संगत साहिब जी माल्टे कड़ी साहिब जी बसमत नगर दमदमा साहिब जी बंदा घाट जी नगीना घाट जी श्री गंगा जी गोदावरी जी के स्नान दर्शन दार मेले बोलो जी। सर्व समूह खालसे जी को नगारे आ निशान साहिबा संजगत तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी दे सुख दे दर्शन दार मेले बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहिब बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहिब बोलो जी बोलो जी बोलो जी बोलो जी श्री वाहिगुरु जी। जी गुरु गरीब नवाज अंतरजामी सचे पातशाह जी महाराज। आप जी के अजुर अमृतमयी शब्द बाणी कीर्तन चौकी सोदर रहरा साहिब जी की अरदास। अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करना बाणी सच खंड विच प्रवान करना। आईया समूह संगतां दी हाजरी प्रवान करना। सिख पढ़दे सुणदे सर्वत लाहे बंद होण गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणी सर्वत का भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।